0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: ব্যাংকজীত হেমত বিলি চি এটিএম মোবাইল দে ইন্টারনেট ব্যাংকিং গোপ্য বিবরণ আরি খাই বিলে তুই মাধ্যম চারে নিপ্রে ছি জানি রি বিষয়া নিয় কল পরিমো চমই নিয় ঠিকদিল খামো ব্যাঙ্গর বে কর্মচারী বীরা নিয় দেপ্রে বিবরণ রি বিষয়া ব্যাংক দি নীল পরিমো নিয় তানি সতর্ক তানা ঠিকা বচেনা সিদ্ধার্থ ব্যাঙ্গর ক্যালে জনহিতরি জারি সন্দেশ
1: সিদ্ধার্থ ব্যাংক সম্বন্ধ সদৈ ভরিলাই
2: तिम्रो जन्मदिन को अवसर में यह औठी उपहार तिमी
3: कस्तो राम्रो डिजाइन को अनि कति चमकिलो कहाँ बनाएको नि डार्लिंग
2: अब तिम्रो लागि दिने उपहार पनि अन्त बनाएर भयो त उही हाम्रो चिर परिचित जय बुद्ध ज्वेलरी में बनाएको नि
3: मलाई त एकदमै मन पर्यो
2: तिमी हेर्दै मात्र जाऊ न अझ हाम्रो विवाह में त सुन को हार मंगलसूत्र सिक्री टप जन्तर चन्द्रमा छर्की तिलहरी चुरी बिन्दिया चाँदीको पाउजु अनि सबै गरगहना जय बुद्ध ज्वेलरीमा नै बनाएर ल्याउँछु नि
4: कम्प्युटर तौलमा छापावाला सुनबाट बनेका आधुनिक डिजाइनका रेडिमेड तथा अर्डर अनुसारका गरगहना राशि अनुसारका पत्थर चाँदीका सामानका साथै पुराना गरगहना साटफेट तथा सुनसादी खरिद बिक्रीका लागि
2: जय बुद्ध ज्वेलरी बेसी सहर लमजुङ एलजी डिलर सँगै प्रोप्राइटर मणिलाल विश्वकर्मा फोन नम्बर 0665242435275 विश्वास तपाईको सेवा हाम्रो
5: धरहरा भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संसद भवन वीर अस्पताल र सीआईटी भवन जस्ता महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ तथा भवनहरूको निर्माणलाई बलियो आधार दिएको सर्वोत्तम सिमेन्ट

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को था।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.
3: तपाईं रेडियो मर्सेन्जी एफएम 55

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी